नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे चमचमाते मेले में या बाजार को देखा है जहां चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हो, मीठी आवाज़ों में आवाज़ें लगाई जा रही हो और झूठी चमक तमक से ग्राहकों को रिझाया जा रहा हो? उस बाजार में कई ऐसे शातिरी ठग और जेबकतरे भी घूम रहे होते हैं जो बातों की मिठास और सस्ते लालच का जाल बिछाते हैं। एक अनजान और भोला भाला ग्राहक जब उस चकाचौंध में खो जाता है तो वह गैर जरूरी और नकली चीज़ों के बदले अपनी गाढ़ी कमाई की पूरी थैली लुटाकर घर लौटता है। जब घर पहुंचकर वह अपनी जेब टटोलता है तब उसे एहसास होता है कि वह तो पूरी तरह लुट चुका है। हमारा यह जो संसार है वह भी ठीक वैसा ही एक मायावी बाजार है जहां हम अपनी सांसों और चेतना की अनमोल पूंजी लेकर आए। कभी साहब आज हमें इसी हाथ बाजार के ठगों से सावधान कर रहे हैं ताकि हमारा यह जीवन व्यर्थ न लूट जाए। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेसा लाई, राम चरण निका मही जिनी जाई जन्म ठगाई। जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेसा लाए, जग हटवाड़ा स्वाद ठग

श्रोताओं, कबीर साहब संसार के मायावी चरित्र का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं, जग हटवाड़ा स्वाद ठग। यह पूरा जग यानी संसार वास्तव में एक हटवाड़ा यानी हाट, बाजार या मंडी है। और इस बाजार में जो हमारी जीभ, आँखें और इंद्रियों के स्वाद यानी नश्वर विषय, भोग और आकर्षण हैं, वे सबसे बड़े ठग यानी जेब कतरे बनकर घूम रहे हैं। इस बाजार का प्रपंच क्या है? माया बेसाला। यहाँ जो माया है वह बेसा यानी वेश्या या नटी का रूप धर कर लुभावने ने श्रृंगार करके जीवों को अपनी तरफ खींचने के लिए दुकान सजाकर बैठी हैं। वह हर किसी को अपनी झूठी चमक में फंसा लेती हैं। इस भयंकर ठगी से बचने का एकमात्र उपाय बताते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, राम चरण निका मही। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे निका यानी उत्तम, निष्कलंक, सच्चा और सुखदाई यानी आश्रय स्थल और जमीन है, तो वह केवल और केवल उस परमात्मा राम के चरण हैं। जिनी जाई जन्म ठगाई, इसलिए है मनुष्य तू उस प्रभु शरण को पहचान और इस सांसारिक बाजार के झूठे स्वादों में पड़कर अपने इस अनमोल मानव जन्म को ठगाई यानी व्यर्थ में मत लुटा, इसे बर्बाद होने से बचा ले। यह दोहा श्रीमद् भागवत गीता और वेदांत के संसार चक्र और वैराग्य का महासूत्र है। संसार को हटवाड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सब कुछ क्रय विक्रय और स्वार्थ के लेन देन पर टिका है। कोई भी रिश्ता या वस्तु स्थायी नहीं है। स्वाद का दार्शनिक अर्थ केवल खाने का स्वाद नहीं, बल्कि इंद्रियों का हर वह सूक्ष्म रस है जो आत्मा को बहिर्मुखी बनाकर फंसाता है। कबीर समझा रहे हैं कि मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिली यह अमूल्य पूंजी है जिसमें आत्मकल्याण खरीदा जा सकता है। यदि इसे क्षणिक भोगों के बदले गवा दिया तो इससे बड़ा कोई आत्मघात नहीं हो सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी जिंदगी के लेन देन का हिसाब लगाइए। हम रोज अपनी अनमोल ऊर्जा, अपनी सांसें और अपना समय किन चीज़ों के बदले बेच रहे हैं? हम थोड़े से मान सम्मान, जरा से पद, झूठी तारीफों और क्षणिक सुखों के लिए अपने मन की शांति और आत्मिक धन को लुटाते जा रहे हैं। आज कोशिश कीजिए इस मायावी बाजार के सम्मोहन से बाहर निकलने की। इंद्रियों के झूठे स्वादों की गुलामी छोड़िए। उस अविनाशी राम नाम के चरणों में अपनी चेतना का लंगर डालिए जो कभी नष्ट नहीं होता। जब आप इस परम सत्य को आश्रय में टिक जाएंगे तो संसार का कोई भी ठग आपकी शांति को लूट नहीं पाएगा और आपका यह मानव जन्म पूरी तरह सार्थक और अमर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, दुरितान से तिमि रजावो, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। पिछले एपिसोड में हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। विश्व क्या है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, उसके ऊपर भी चर्चा की। ग्रह, नवग्रह जो है उनके बारे में कथा भी सुनी। अभी हम चिंतन करेंगे स्वधर्मे। यह स्वधर्मे जो शब्द है बहुत आकर्षक है, चिंतनीय है। और मेन कैच जो हम कहते हैं वो मुझे लगता है यह स्वधर्मे है। विश्व स्वधर्मे सूर्य, पंचलाइन जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, ये पंचलाइन जो है स्वधर्मे, उसमें धर्म भी आ गया। और धर्म जो है, धर्म और कर्म, हम कहते हैं ना धर्म और कर्म। और इसलिए भगवद गीता की शुरुआत ही है जो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उसकी शुरुआत है धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। फिर ये धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, वो तो अलग चिंतनीय विषय है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म जो है, हम सुनते बहुत है धर्म के बारे में, और हमारी मान्यता भी कई है, अनेक धर्म हम मानते हैं। मुख्य रूप से हम चार धर्म मानते हैं, वैसे तो बहुत सारे धर्म है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ऐसे मानते हैं। तो ये धर्म है। और ये विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे, ये जो मतलब है वो शब्द यूज किया है संत श्रेष्ठ माउली ने, उसका मतलब क्या होगा? कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्वधर्मे मीन्स जन्म से हमें हमारे धर्म का पालन करना है। लेकिन वो कौन सा धर्म? और धर्म और कर्म, जैसा धर्म है वैसा कर्म है, ऐसे भी सोचते हैं। और गीता में और भी एक धर्म का उल्लेख है, धर्म शब्द का प्रयोग किया है, वैसे तो बहुत जगह किया है, लेकिन जो मन को भा लेता है या मन को चिंतन करने को प्रवृत्त करता है वो है, कौन सा है? जब भी धर्म की ग्लानि होती है संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, ये जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए गीता में कहा गया है कि मैं युगे युगे अवतार ले लूंगा, है ना? तो ये धर्म कौन सा है? तो ये धर्म, अगर धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म की संस्थापना जो है, ये अभिप्रेत कौन सी है? हिंदू धर्म की। ये गीता में हमारा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म की गीता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने, जो मानते हैं हम गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब भगवान को ये अभिप्रेत है कि संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म संस्थापना जो है वो हिंदू धर्म की है या और कोई धर्म की? इसके ऊपर हमें रियली गहन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बार गलत फहमी में रहते हैं और इसलिए सोचते हैं कि यह गीता सिर्फ हिंदुओं की है। और बाद में बहुत सारे लोग हैं, गीता का अगर आपने विस्तृत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, सारे जगत में उसका अभ्यास हुआ है और उसको मान्यता भी है। तो ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म से भी कुछ हटके है। और फिर भी माउली ने और एक शब्द यूज किया, धर्म, सिर्फ धर्म नहीं, विश्व स्वधर्मे। तो स्वधर्मे मीन्स खुद का धर्म, खुद मीन्स कौन,
मैं, मेरा धर्म, फिर मैं कौन, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कथा है छोटी सी, शेयर करेंगे आपसे। विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं, वो रामकृष्ण परमहंस उनके आश्रम में गए थे। बाहर से उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उन्होंने पूछा कि कौन, तो विवेकानंद जी तो दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा मैं। तो फिर रामकृष्ण जी ने पूछा मैं कौन, विवेकानंद जी का जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मैं कौन, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं गुरुवर। तो ये मन मैं जो है, ये जब पता चलेगा तो स्वधर्म का पता चलेगा, और इसलिए कहते हैं ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे मेरा धर्म, और मेरा जो धर्म है, मैं पहले कौन, तो मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरे आत्मा का धर्म जो है वो है शांति। तो स्वधर्म जो है वो है शांति, और इसलिए ये शांति कब मिलेगी, जब पवित्रता आएगी। और ये इसलिए बोलते हैं कि ये देखो शांति हम कहते हैं, हम आत्मा की बात कहते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा की बात मत करो, हम मानते ही नहीं आत्मा है परमात्मा है ये भी नहीं मानते। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है, हम बातें बहुत करते हैं लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते। देखिए अगर कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, या उस आत्मा के लिए शांति का दान दे, इस ऐसी सद्भावना रखते, उसको सदगति मिले, उसे शांति मिले, मीन्स पहले नहीं थी। हम जब जिंदा है तब आत्मा को शांति नहीं थी, और कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गणपति है, वहां विसर्जन है, बहुत बैंड बाजा, बहुत शोर शराबा होता है, डीजे आजकल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है आवाज। आप 2-3 घंटा वहां खड़े रहो, कान पक जाएंगे, और फिर जब घर पे आएंगे बोलतेंगे हाँ यहाँ कितना अच्छा लगता है, शांति लगती है। तो ये शांति जो है वो अच्छी लगती है, लगती है ना, क्यों अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हैं हम ओरिजिनल स्टेज पे आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। अशांति आदमी को अच्छी नहीं लगती, आदमी कोई भी व्यक्ति को अशांति अच्छी नहीं लगती, भले थोड़े देर के लिए वो सह लेता है, या कोई गलत फहमी से उसको ये लगता है कि ये अशांति अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वो अच्छी नहीं लगती और शांति अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हैं शांतिपूर्ण, शांतता। और हमारा भारत देश भी ऐसे मान्यता है कि शांतिपूर्ण है। तो ये शांति जो है वो कब आएगी, मन अशांत है तो गड़बड़ है, और मन शांत है तो अच्छा है। और ये शांति जब आती है, जब मन में पवित्रता हो। पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो पानी को स्थिर कर दो तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, स्वधर्म मेरा जो है वो शांत है, लेकिन अगर वो शांति नहीं है तब मैं अशांत हूं, और फिर उसका परिवर्तन, उसका परिणाम दुख में हो जाता है। और इसलिए शांति हमेशा अच्छी लगती है, और ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे जो मुझे लगता है, आप भी उसके ऊपर चिंतन करो। आप ज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने काफी मेरे से भी शायद ज्यादा पढ़ा है, तो उसके ऊपर मेरा ये जो प्रयोजन है आपके साथ शेयर करने का, ये नहीं है ठोपना नहीं है आपके ऊपर कि यही मैं कह रहा हूं वही सही है।
आपके विचारों को दिशा देने का ये प्रयास है, और ये प्रयास सक्सेसफुल होगा अगर आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, और फिर आपको जैसा लगे वैसा है। तो ये स्वधर्म के ऊपर मुझे ऐसा जो चिंतन था वो आपके सामने पेश किया है। अभी सूर्य जो है, सूर्य, उसके ऊपर अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: नमस्कार, ओम शांति। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नौ ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नौ ओवी है, नौ चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशियंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये माउली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण ओवी जो है, तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितांसे तिमिरजावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व, उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य, 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है उसके जो शब्द प्रयोग वाक प्रचार बोलते हैं, सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है, और ये सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है। हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हर एक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है, नौ ओवी, नौ चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि इसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे, वो भी कम है। तो यह ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर, विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा, स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा? सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है, हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं तो मावली को अभिप्रेत क्या है? ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है? ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है, और बचपन में मैं, मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे, और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में, मेरे पेट में धारण करता हूं तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जितनी व्याधि है सर्व व्याधि उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये सूरज जो है क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हर्ट टचिंग।
2: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है तो लगा कि इस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीख कर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं यानी कि जो अन्न है उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है, इसीलिए सही खाना डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहाँ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हो। ये जो मन की बात थी उसका, और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
3: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज़्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज़्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
2: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम
3: बीमार भी होने लगे,
2: हम वो सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहां हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है, कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
3: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए, हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते हो, लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं, उसके कारण आंसू आने लगते हैं। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं, को दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वो वॉलेटाइल एसिड्स आंखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ, जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी, तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, फ्रूट्स के, सब्जियों के और आपको बेनिफिट्स होंगे, तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी।
2: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहाँ तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
3: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको।
2: अच्छा,
3: क्यों जो ना उसकी बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक, वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं। बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ले इस पर।
4: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी।
3: हाँ, अल्टीमेटली ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है,
4: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है अगर इतना 10% कम हुआ, लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो भी स्टिल 10% अप ना, तो दैट वी हैव टू
3: आल्सो देखना। ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे।
2: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखें, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता। जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं, सी दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें।
4: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा। नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल वाइल कुकिंग, जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स। तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं, दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स वाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी। राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं दे विल बी आउट। एंड उसके लिए थोड़ा सा और करना, द किचन शुड बी वेरी क्लीन, द एनवायरनमेंट शुड बी वेरी प्योर, आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा एटमोसफियर उस तरह से क्रिएट हो जाता है कि थॉट्स आपकी ऑटोमेटिकली फिर उसी तरफ चलती हैं। और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, डोंट गो टू कुक, सिट विद योरसेल्फ, रिजॉल्व द इशू, एंड देन गो इनटू द किचन, अदरवाइज गुस्से वाला खाना बनेगा।
3: जो शिवानी बन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ। इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है।
2: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हम, सारी चीज़ें ज्ञान समझने के बाद, से शिवानी बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती
3: है? तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को भले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है। मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है। ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो, तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ, तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है, आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ। फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए, और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे, कहते बस थोड़े ही दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा।
2: दिस इज इवन माय एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन, हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील जब मैं बात कर रही हूँ, आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था। द मोमेंट आई एक्चुअली, और अब मैंने रियलाइज किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है
4: बिकॉज अब औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे।
2: हाँ, शायद
4: एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी।
2: आपको हर चीज पे एफर्ट था
4: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही आपने अपने आपको प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज चार पांच चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रहे हो, ठीक है। दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें है ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं, सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता, दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं, सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल

0: मैंने ठीक खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन, नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया, ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं।
1: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे
2: नहीं
1: जब
2: तो कभी
1: डिस्कशन
2: ज्यादा,
1: करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है, केवल बात करनी है पहले ही कर लो या उसके बाद करो, बेस्ट है। तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट होगी।
2: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था, बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंडसेट। यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है, तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है। इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का। अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट, लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंजाइटी रहती है कि अब ये खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करो, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ,
0: फियर की ना,
2: हाँ,
0: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन,
2: मैं बना दूँ कि चला ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाए, ओह चले ना जाए ये लोग, सो दीज वाइब्रेशंस।
0: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को तब कैसे खिलाते हैं,
2: तब
0: कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं, कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
2: बच्चा रो
0: रहा, दूध चला जाए, बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाए, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितने इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है। तो कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना
2: तो
0: चाहिए।
2: बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है, कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले।
1: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो, आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया, बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो। अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे। फिर भी जो दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है, कि भी फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई रीति से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी।
2: एंड देन बिना, अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे, गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
0: ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है तो वो उसके मन के और तन के लिए दोनों के लिए बहुत असरदार है।
2: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे, पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड, या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं। फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं,
1: दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है। अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे खाने की बात कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं, और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भले आत्मा ही कराती है परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके

0: उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए वह बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियाँ देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
1: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं?
0: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में बहुत बड़ी कमी है।
1: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है?
0: या डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज़ के पेशेंट है, पता है फिर भी खा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई। पता है कि भाई नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना है और फिर टोटली मैं समाप्त कर लूँ। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहाँ पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो, तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
2: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
1: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
0: वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई,
1: लेकिन वो भी हार्मफुल है,
0: एडिक्शन।
1: हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
0: तो
1: वो
0: आदत हो गई। हाँ
1: हाँ, तो वो सही नहीं,
0: सही
1: है,
0: बिल्कुल नहीं।
1: सिस्टर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए।
2: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे, मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ What's not good for me? तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे तो उनको कैसे समझा पाएंगे? The energy won't work then that side. One more thing we need to take care of, कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। See, it's a little deeper, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिस, तो तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ का धन कैसे कमाया जाता है. बी वेरी केयरफुल.
0: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो. वह सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है. लेकिन वह कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो. आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है. अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो, तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए.
1: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं. बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है. शिवानी डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया. थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज हमने बहुत सी बातें समझी. इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहाँ से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, ज़रा सोचना शुरू करें, ज़रा देखना शुरू करें, ज़रा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे. कोई बात मन में है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. आगे मिलेंगे. ओम शांति.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे चमचमाते मेले में या बाजार को देखा है जहां चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हो, मीठी आवाज़ों में आवाज़ें लगाई जा रही हो और झूठी चमक तमक से ग्राहकों को रिझाया जा रहा हो। उस बाजार में कई ऐसे शातिर ठग और जेबकतरे भी घूम रहे होते हैं जो बातों की मिठास और सस्ते लालच का जाल बिछाते हैं। एक अनजान और भोला भाला ग्राहक जब उस चकाचौंध में खो जाता है तो वह गैर जरूरी और नकली चीज़ों के बदले अपनी गाढ़ी कमाई की पूरी थैली लुटाकर घर लौटता है। जब घर पहुंचकर वह अपनी जेब टटोलता है तब उसे एहसास होता है कि वह तो पूरी तरह लूट चुका है। हमारा यह जो संसार है वह भी ठीक वैसा ही एक मायावी बाजार है जहां हम अपनी सांसों और चेतना की अनमोल पूंजी लेकर आए। कभी साहब आज हमें इसी हाट बाजार के ठगों से सावधान कर रहे हैं ताकि हमारा यह जीवन व्यर्थ न लूट जाए। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेसा लाई, राम चरण निका मही जिनी जाई जन्म ठगाई। जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेसा लाए, जग हटवाड़ा स्वाद ठग

हाय श्रोताओं, कबीर साहब संसार के मायावी चरित्र का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं, जग हटवाड़ा स्वाद ठग। यह पूरा जग यानी संसार वास्तव में एक हटवाड़ा यानी हाट, बाजार या मंडी है। और इस बाजार में जो हमारी जीव, आंखें और इंद्रियों के स्वाद यानी नश्वर विषय, भोग और आकर्षण हैं, वे सब सब सबसे बड़े ठग यानी जेब कतरे बनकर घूम रहे हैं। इस बाजार का प्रपंच क्या है? माया बेसाला। यहाँ जो माया है वह बेसा यानी वेश्या या नटी का रूप धर कर लुभाव ने श्रृंगार करके जीवों को अपनी तरफ खींचने के लिए दुकान सजाकर बैठी हैं। वह हर किसी को अपनी झूठी चमक में फंसा लेती हैं। इस भयंकर ठगी से बचने का एकमात्र उपाय बताते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, राम चरण निका मही। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे निका यानी उत्तम, निष्कलंक, सच्चा और सुखदायी यानी आश्रय स्थल और जमीन है, तो वह केवल और केवल उस परमात्मा राम के चरण हैं। जिनी जाए जन्म ठगाई, इसलिए है मनुष्य तू उस प्रभु शरण को पहचान और इस सांसारिक बाजार के झूठे स्वादों में पड़कर अपने इस अनमोल मानव जन्म को ठगाई यानी व्यर्थ में मत लुटा, इसे बर्बाद होने से बचा लें। यह दोहा श्रीमद् भागवत गीता और वेदांत के संसार चक्र और वैराग्य का महासूत्र है। संसार को हटवाड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सब कुछ क्रय विक्रय और स्वार्थ के लेन देन पर टिका है। कोई भी रिश्ता या वस्तु स्थायी नहीं है। स्वाद का दार्शनिक अर्थ केवल खाने का स्वाद नहीं, बल्कि इंद्रियों का हर वह सूक्ष्म रस है जो आत्मा को बहिर्मुखी बनाकर फंसाता है। कबीर समझा रहे हैं कि मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिली यह अमूल्य पूंजी है जिसमें आत्मकल्याण खरीदा जा सकता है। यदि इसे क्षणिक भोगों के बदले गवा दिया तो इससे बड़ा कोई आत्मघात नहीं हो सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी जिंदगी के लेन देन का हिसाब लगाइए। हम रोज अपनी अनमोल ऊर्जा, अपनी सांसें और अपना समय किन चीज़ों के बदले बेच रहे हैं? हम थोड़े से मान सम्मान, जरा से पद, झूठी तारीफों और क्षणिक सुखों के लिए अपने मन की शांति और आत्मिक धन को लुटाते जा रहे हैं। आज कोशिश कीजिए इस मायावी बाजार के सम्मोहन से बाहर निकलने की। इंद्रियों के झूठे स्वादों की गुलामी छोड़िए। उस अविनाशी राम नाम के चरणों में अपनी चेतना का लंगर डालिए जो कभी नष्ट नहीं होता। जब आप इस परम सत्य को आश्रय में टिक जाएंगे तो संसार का कोई भी ठग आपकी शांति को लूट नहीं पाएगा और आपका यह मानव जन्म पूरी तरह सार्थक और अमर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो दुरितान से तिमिर जावो, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। पिछले एपिसोड में हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। विश्व क्या है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, उसके ऊपर भी चर्चा की। ग्रह, नवग्रह जो है उनके बारे में कथा भी सुनी। अभी हम चिंतन करेंगे स्वधर्म में। यह स्वधर्म में जो शब्द है बहुत आकर्षक है, चिंतनीय है। और मेन कैच जो हम कहते हैं वो मुझे लगता है यह स्वधर्म में है। विश्व स्वधर्म में सूर्य, पंचलाइन जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, ये पंचलाइन जो है स्वधर्म में, उसमें धर्म भी आ गया। और धर्म जो है, धर्म और कर्म हम कहते हैं ना, धर्म और कर्म। और इसलिए भगवद गीता की शुरुआत ही है जो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उसकी शुरुआत है धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। फिर ये धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है वो तो अलग चिंतनीय विषय है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म जो है, हम सुनते बहुत है धर्म के बारे में, और हमारी मान्यता भी कई है, अनेक धर्म हम मानते हैं। मुख्य रूप से हम चार धर्म मानते हैं, वैसे तो बहुत सारे धर्म है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ऐसे मानते हैं। तो ये धर्म है। और ये विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, स्वधर्म में ये जो मतलब है वो शब्द यूज किया है संत श्रेष्ठ माउली ने, उसका मतलब क्या होगा। कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्वधर्म में मीन्स जन्म से हमें हमारे धर्म का पालन करना है। लेकिन वो कौन सा धर्म, और धर्म और कर्म, जैसा धर्म है वैसा कर्म है, ऐसे भी सोचते हैं। और गीता में और भी एक धर्म का उल्लेख है, धर्म शब्द का प्रयोग किया है, वैसे तो बहुत जगह किया है, लेकिन जो मन को भा लेता है या मन को चिंतन करने को प्रवृत्त करता है वो है, कौन सा है। जब भी धर्म की ग्लानी होती है, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, ये जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए गीता में कहा गया है कि मैं युगे युगे अवतार ले लूंगा, है ना। तो ये धर्म कौन सा है, तो ये धर्म अगर धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म की संस्थापना जो है, ये अभिप्रेत कौन सी है, हिंदू धर्म की। ये गीता में हमारा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म की गीता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने, जो मानते हैं हम गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब भगवान को ये अभिप्रेत है कि संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म संस्थापना जो है वो हिंदू धर्म की है या और कोई धर्म की, इसके ऊपर हमें रियली गहन चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत बार गलत फहमी में रहते हैं और इसलिए सोचते हैं कि यह गीता सिर्फ हिंदुओं की है, और बाद में बहुत सारे लोग हैं। गीता का अगर आपने विस्तृत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, सारे जगत में उसका अभ्यास हुआ है और उसको मान्यता भी है। तो ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म से भी कुछ हटके है। और फिर भी माउली ने और एक शब्द यूज किया, धर्म, सिर्फ धर्म नहीं, विश्व स्वधर्म में। तो स्वधर्म मीन्स खुद का धर्म, खुद मीन्स कौन,
मैं, मेरा धर्म, फिर मैं कौन, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कथा है छोटी सी, शेयर करेंगे आपसे। विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं, वो रामकृष्ण परमहंस उनके आश्रम में गए थे। बाहर से उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उन्होंने पूछा कि कौन, तो विवेकानंद जी तो दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा मैं। तो फिर रामकृष्ण जी ने पूछा मैं कौन, विवेकानंद जी का जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मैं कौन, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं गुरुवर। तो ये मन मैं जो है, ये जब पता चलेगा तो स्वधर्म का पता चलेगा, और इसलिए कहते हैं ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे मेरा धर्म, और मेरा जो धर्म है, मैं पहले कौन, तो मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरे आत्मा का धर्म जो है वो है शांति। तो स्वधर्म जो है वो है शांति, और इसलिए ये शांति कब मिलेगी, जब पवित्रता आएगी। और ये इसलिए बोलते हैं कि ये देखो शांति हम कहते हैं, हम आत्मा की बात कहते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा की बात मत करो, हम मानते ही नहीं आत्मा है परमात्मा है ये भी नहीं मानते। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है, हम बातें बहुत करते हैं लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते। देखिए अगर कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, या उस आत्मा के लिए शांति का दान दे, इस ऐसी सद्भावना रखते, उसको सद्गति मिले, उसे शांति मिले, मीन्स पहले नहीं थी। हम जब जिंदा है तब आत्मा को शांति नहीं थी, और कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गणपति है, वहां विसर्जन है, बहुत बैंड बाजा, बहुत शोर शराबा होता है, डीजे आजकल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है आवाज। आप 2-3 घंटा वहां खड़े रहो, कान पक जाएंगे, और फिर जब घर पे आएंगे बोलतेंगे हाँ यहाँ कितना अच्छा लगता है, शांति लगती है। तो ये शांति जो है वो अच्छी लगती है, लगती है ना, क्यों अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हैं हम ओरिजिनल स्टेज पे आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। अशांति आदमी को अच्छी नहीं लगती, आदमी कोई भी व्यक्ति को अशांति अच्छी नहीं लगती, भले थोड़े देर के लिए वो सह लेता है, या कोई गलत फहमी से उसको ये लगता है कि यह अशांति अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वो अच्छी नहीं लगती और शांति अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हैं शांतिपूर्ण, शांतता। और हमारा भारत देश भी ऐसे मान्यता है कि शांतिपूर्ण है। तो ये शांति जो है वो कब आएगी, मन अशांत है तो गड़बड़ है, और मन शांत है तो अच्छा है। और ये शांति जब आती है, जब मन में पवित्रता हो। पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो पानी को स्थिर कर दो तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, स्वधर्म मेरा जो है वो शांत है, कब, लेकिन अगर वो शांति नहीं है तब मैं अशांत हूं, और फिर उसका परिवर्तन, उसका परिणाम दुख में हो जाता है। और इसलिए शांति हमेशा अच्छी लगती है, और ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे जो मुझे लगता है, आप भी उसके ऊपर चिंतन करो। आप ज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने काफी मेरे से भी शायद ज्यादा पढ़ा है, तो उसके ऊपर मेरा ये जो प्रयोजन है आपके साथ शेयर करने का, ये नहीं है ठोपना नहीं है आपके ऊपर कि यही मैं कह रहा हूं वही सही है।
आपके विचारों को दिशा देने का ये प्रयास है, और ये प्रयास सक्सेसफुल होगा अगर आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, और फिर आपको जैसा लगे वैसा है। तो ये स्वधर्म के ऊपर मुझे ऐसा जो चिंतन था वो आपके सामने पेश किया है। अभी सूर्य जो है, सूर्य, उसके ऊपर अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: नमस्कार, ओम शांति। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञान ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नौ ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नौ ओवी है, नौ चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशियंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये माउली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण ओवी जो है, तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व, उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था, तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य, 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है, उसके जो शब्द प्रयोग वाक प्रचार बोलते हैं, सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है, और ये सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है। हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हर एक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है, नौ ओवी, नौ चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि इसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे, वो भी कम है। तो ये ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर, विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा, स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा? सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है, और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं, तो मावली को अभिप्रेत क्या है? ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है? ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है। और बचपन में मैं, मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे, और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में, मेरे पेट में धारण करता हूं तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी व्याधि है, सर्व व्याधि, उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है, और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, ये सूरज जो है, क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हर्ट टचिंग।
2: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है तो लगा कि इस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीखकर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं यानी कि जो अन्न है उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है, इसीलिए सही खाना डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहाँ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हो। ये जो मन की बात थी उसका, और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
3: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज़्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज़्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
2: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम
3: बीमार भी होने लगे हैं,
2: हम वो सफर करें। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहां हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है, कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
3: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आँखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आँख में जाते हो, लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं, उसके कारण आंसू आने लगते। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं, वो दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वॉलेटाइल एसिड्स आंखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ, जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी, तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, फ्रूट्स के, सब्जियों के और आपको बेनिफिट्स होंगे, तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी।
2: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहाँ तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
3: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको।
2: अच्छा,
3: क्यों जो ना उसकी बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक, वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं, बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ली इस पर।
4: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी।
3: हाँ, अल्टीमा भी, ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है।
4: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर इतना 10% कम हुआ, लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो भी स्टिल 10% अप ना, तो दैट वी हैव टू
3: आल्सो देखना। ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे।
2: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखें, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता, जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं। सी दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें।
4: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा। नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल वाइल कुकिंग, जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स। तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं, दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स वाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी। राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं दे विल बी आउट। एंड उसके लिए थोड़ा सा और कि ना, द किचन शुड बी वेरी क्लीन, द एनवायरनमेंट शुड बी वेरी प्योर, आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा एटमोसफियर उस तरह से क्रिएट हो जाता है कि थॉट्स आपकी ऑटोमेटिकली फिर उसी तरफ चलती हैं। और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, डोंट गो टू कुक, सिट विद योरसेल्फ, रिजॉल्व द इशू एंड देन गो इनटू द किचन, अदरवाइज गुस्से वाला खाना बनेगा।
3: जो शिवानी बेन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ। इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है।
2: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हैं हम, सारी चीज़ें ज्ञान समझने के बाद, सिस्टर शिवानी बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती
3: है? तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को भले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है। मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है। ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो, तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ, तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है, आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ। फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए, और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे, कहते बस थोड़े दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा।
2: दिस इज इवन माय एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन, हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील जब मैं बात कर रही हूँ, आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था द मोमेंट आई एक्चुअली। और अब मैंने रियलाइज किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है
4: बिकॉज अब औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे।
2: हाँ, शायद
4: एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी।
2: आपको हर चीज पे एफर्ट था
4: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज चार पांच चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रहे हो, ठीक है। दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें हैं ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं, सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता, दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको, इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं, सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं, तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन। 10 मिनट ही खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन, नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया, ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं।
3: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे,
2: नहीं तो कभी ज्यादा
3: करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है, केवल बात करनी है पहले ही कर लो या उसके बाद करो बेस्ट है। तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट।
2: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था. बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंड सेट. यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है, तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है. इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का. अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता. लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट. लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है, यू नो, और एक एंग्जाइटी रहती है कि अब ये खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करो, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ.
4: फियर की ना,
2: हाँ,
4: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन.
2: बना दूंगी, चला हाँ. ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाए, ओ वो चले ना जाए ये लोग, यू नो, सो दीज वाइब्रेशंस.
4: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, तब कैसे खिलाते हैं?
2: तब
4: कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं, कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
2: बच्चा रो
4: रहा होता है, चला जाए. पर बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाएं, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितना इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है. तो कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए.
2: बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं. हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है, एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले.
3: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो. आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया. बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो. अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे. फिर भी जो दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है. कि फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज, जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई रीति से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी.
2: एंड देन बिना, अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज, यू नो, कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे. गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
4: तो ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है, तो वो उसके मन के और तन के लिए, दोनों के लिए बहुत असर ला रहा है.
2: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन, कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे. पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड. या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं, कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं. फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं.
3: दोनों इफेक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है. अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना,

0: नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए वह बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियाँ देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
1: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं?
0: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में बहुत बड़ी कमी है।
1: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है?
0: डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं। आपने जैसे कहा कि डायबिटीज के पेशेंट है, पता है फिर भी खा रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई। पता है कि भाई नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना और फिर टोटली मैं समाप्त कर लूं। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो, तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
2: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
1: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
0: वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई,
1: लेकिन वो भी हार्मफुल है,
0: एडिक्शन।
1: हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
0: तो
1: वो
0: आदत हो गई।
1: हाँ, तो वो सही नहीं,
0: सही
1: है,
0: बिल्कुल नहीं।
1: सिस्टर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए,
2: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ What's not good for me? तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे। Because हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे, तो उनको कैसे समझा पाएंगे? The energy won't work then that side. One more thing we need to take care of, कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। See, it's a little deeper, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए।

0: दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अनस्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ का धन कैसे कमाया जाता है. बी वेरी केयरफुल.
1: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो. वो सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है. लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो. आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है. अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो, तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए.
2: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है. शिवानी डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया. थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज हमने बहुत सी बातें समझी. इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहाँ से, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, ज़रा सोचना शुरू करें, ज़रा देखना शुरू करें, ज़रा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे. कोई बात मन में है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे. ओम शांति.